जीवन यात्रा शीतलता जीवन यात्रा जीवित अलेना छेगु जीवन या पला पला किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम।

जीवन यात्रा शीतलता बीमा जीवन यात्रा जीवित यईमा अलिना पं छेगु जीवन या पला पला नेपुकीमा किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम।

0: यो हो किप्स 98.3 FM तपाईं सँगको सहयात्रा
1: नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका गीत संगीतको साथमा रमाइला सेगमेन्टहरू कार्यक्रम
0: म्युजिक मजा म्युजिक
1: प्रत्येक मंगलबार बेलुकी 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म र प्रत्येक बिहीबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म मात्र किप्स 98.3 एफएम मा
2: किप्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स पॉप आवर
3: मुझे कैसे पता न चला
2: Every Friday, 12 p.m.
4: Afri, Afri, Afri, Afri Usne jana ki tarif mumkin nahi
5: Hazur, New Kathmandu Electric Electronics ma paincha Motorcycle, Scooter, Car, Van, Jeep, Pickup, Hatti Gaadi, Bus, Truck, Excavator ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी हरू विद ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
6: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गूगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू

0: best romantic Hindi songs. Best romantic Hindi songs. Best romantic Hindi songs. Every Sunday, 9 p.m. Tuesday, 6 p.m. Pehla nasha, pehla khumar. Station, Gifts FM 98.3 MHz. Naya pyaar hai, naya
1: intizaar. Hazur, New Kathmandu Electric Electronics ma paincha motorcycle, scooter, car, van, jeep, pickup, hatti gadi, bus, truck, excavator, ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी हरू विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
2: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गूगल गर्नु होस बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
3: व्हाट्स द सीक्रेट टू सक्सेस
4: सिंपल Say yes to radio advertising.
3: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
4: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
3: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
5: You can dance.
6: You can sing. All you gotta do is
7: just tune in.
6: KIPS FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
8: अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित
9: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुबिसु सुरक्षा
10: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट
9: साथै सुबिसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
10: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
8: सुबिसु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
11: 01-42-35-888 98-12-35-888
12: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत Just tune in, radio, naya generation ko.
6: Enjoy the cover version of your favorite songs. Covermania at 98.3. Covermania at 98.3.
13: Every Monday, 5 p.m. and Friday,

0: listening to Kids 98.3 FM.
1: In aankhon ki masti mastane hazaar
2: Kids 98.3 FM ma gazal sansar
3: mujhse milne shama jala kar aaj mahal mein
2: गजल संसार
3: का खजाना तेरा भी है, मेरा भी।
4: हर एक शनिवार बिल्कुल 10 बजे
5: नेपाली पॉप फ्लैशबैक Every Sunday and Tuesday 10 p.m., Thursday 9 a.m. and Saturday 5 p.m.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: भाषाया न्याय पुसेचौं मेत।
1: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।

0: Kips 98.3 FM, your companion.
1: अगर कोई मुझसे ये पूछे,
2: क्या
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
2: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
2: क्या

0: are in tune to KIPPS FM 98.3 MHz, your companion.
1: KIPPS 98.3 FM मा गजल संसार
2: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
1: गजल संसार
2: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी
3: हर एक शनिवार दिल की 10 बजे

0: FM 98.3 presents Pop Hour.
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार.
0: Every Friday 12 p.m.

0: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग.
1: तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं.
0: एवरी संडे 9 PM एंड ट्यूजडे 6 PM.
2: History of Rock.
3: Here I am. Rock you like a hurricane.
4: Monday 3 p.m. Only on Keeps FM 98.3 MHz, your companion.
5: Classic Hindi pop time.
6: Chalne lagi hai hawaye. Sagar bhi lehra.
5: Classic Hindi pop time at Kips FM 98.3.

0: 하셔야 내부세 좋습니다.
1: 수태야 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
2: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
3: चलने लगी हैं हवाएं सागर भी लहराए
2: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा
1: What's the secret to success?
2: Simple. Say yes to radio advertising.
1: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
2: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
1: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
3: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कुटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
4: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
5: यू कैन डांस
6: यू कैन सिंग ऑल यू गॉट टू डू इज
7: जस्ट ट्यून इन
8: किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज योर कंपेनियन द रेडियो ऑफ न्यू जनरेशन
9: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत जस्ट ट्युन इन रेडियो नयाँ जेनेरेसनको

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: पुरै एक घंटा तीनवटा मूवीज का सुपरहिट गीतहरु
3: थ्री इन वन
4: Every Saturday 9 a.m. and Thursday 6 p.m.

0: अप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
1: सम्पर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
2: यू कैन डांस

Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: Number 5.
1: जमाने की तरह हम भी तोड़े हैं गए.
2: मूवी
3: पति पत्नी और वो दो.
2: सॉन्ग
3: हमने वही लगाया दिल.

0: हिप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
0: गजल संसार
1: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी
2: हर एक शनिवार बिल्कुल 10 बजे

0: FM 98.3 presents Pop Hour.
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार
0: Every Friday 12 PM.

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपालभरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्। अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड अलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
1: नया नया सजौ है संसार, सुख दुख बाटो है मेरे।
2: Keeps unplugged.
3: फुल है ना काड़ा काड़े बाटो।
2: नेपाली आर्टिस्ट सिंगर्स हरका अनप्लग्ड गीतहरु सुन्न नछुट्याउनु होला। हरेक आइतबार मध्याह्न 12 बजे र शनिबार दिउँसो 4 बजे।

0: 104.3 FM
1: क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी।
2: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग, बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग।
3: दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल।
2: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग्स एवरी संडे 9 PM, ट्यूसडे 6 PM।
3: पहला नशा पहला खुमार।
2: स्टेशन गिव्स FM 98.3 MHz।

0: प्रेसको साथ अब नेपालभरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरूमा फ्री इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरुखुरु
0: कनेक्ट टु माई वर्ल्ड लिंक एन्ड अलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यु आर।
2: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
3: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
4: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
5: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
4: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
6: Namaskar!
7: Namaskar!
6: Kahiye, kya sunenge aap?
8: Enjoy 60s, 70s and 80s Bollywood numbers.
9: Bollywood Golden Hits.
8: Every Monday and Friday 10 p.m. Sunday and Tuesday 4 p.m. Keeps FM 98.3 presents Pop Hour.
10: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू।
8: Every Friday, 12 p.m.

0: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
0: गजल संसार
1: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी
2: हर एक शनिवार बिल्कुल 10 बजे

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: world full of tremendous numbers of trends and your busy schedule. Are you missing out trending English hits? If yes, the radio of new generation presents What's Trending. Just to keep you updated about trending English hits and its information. Every Saturday, 7 a.m. and Thursday, 9 p.m. Only on KIPS FM 98.3 MHz. Never miss out being trendy.
1: You can dance.
2: You can sing. All you gotta do is
3: just tune in.
0: KIPS FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
4: 아밀라이 순호스 www.kipsfm.com 마르폿 Just tune in radio 나야 generation 코
5: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
6: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
7: नेपाली सुपर हिट्स

0: 3 in 1. From the movie Be
1: Fikri. तो फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
2: राइट.
1: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
2: Nadie jamais je t'aime.
3: Nadie jamais je t'aime. Ah, it's so sexy.

0: life-changing quotes. आरती उपदेश र औषधि मीठो हुन्न।
1: नेपाली पप गीतहरुको उतार चढ़ाव कुन गीत कुन स्थानमा छ, साथै नेपाली पप गीतहरुबाट भरपूर मनोरञ्जन लिन सुन्न नभुल्नु होला। टिप्स मोस्ट वान्टेड, टिप्स मोस्ट वान्टेड।
2: हरेक शनिबार मध्याह्न 12 बजे, आइतबार राति 8 बजे र मंगलबार बिहान 9 बजे।
3: कार्यक्रम कलियुग टाइम, कलियुग टाइम।
4: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.